प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश, शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेज धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति

को उसकी लंबाई चौड़ाई में बनाया। इस महल की चार दीवारी में सुंदर बाग बगीचे फुलवारियां तालाब बनाए गए। इसमें हंस मोर और अन्य पक्षियों को बसाया गया। इस रमणीक और मनोहारी भवन में

0: एड्रेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहियो
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: फ्लैश फ्लैश फ्लैश फ्लैश
1: हमको एक नाड़ी आई वो है एक खिलाड़ी उसके धंधे

0: 7 से 36।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

ने कबाल मांगली चली को धनी जबन बाईली खेली को तांसी घमाइला रता निर्भया उती रमाइला मांगली चली को धनी जबन बाईली खेली को तांसी घमाइला रता निर्भया उती रमाइला रता निर्भया

0: 43 7 से 36
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: 7 से 36
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँ भरि
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ।

0: रोड काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

को उसकी लंबाई चौड़ाई में बनाया। इस महल की चार दीवारी में सुंदर बाग बगीचे फुलवारियां तालाब बनाए गए। इसमें हंस मोर और अन्य पक्षियों को बसाया गया। इस रमणीक और मनोहारी भवन में

आप लोग उत्तर दिशा में जाइए, जो भी प्राणी सबसे पहले आपको मिले उसका सिर काट कर ले आइए और इस बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कीजिए। देवताओं के जाने के बाद भोलेनाथ शिला पर बैठकर देवताओं के विषय में सोचने लगे।